पुकार। गावे राजे राणिया बोले आल पतार, लटकियां के मुंदड़े लटकियां के हार। जितन पाई नानका सेतन होवे छार।

क्यों जागे गुरबिन सुता ओगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई छिल छाई पाई मूर्ख अंत पत गवाई विण ना वे किस ताय न पाई रह बेबाणी मणि मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी।

0: तत
1: सकुन में आपको परकुन में को धरता राजू तोलिए निमिस गौरा हो अपराधी दूणान में जो अंता मृगाय शीस नवाये क्या थिए जार दे कुसुधे जाय
0: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजुस बुगुल समादंग मुखचूट विभुखन सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला दिल लिलाटंग दो दोती बस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ो सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना

0: नाटमेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता सचुग्रह संतो का धर्म गिरथवाओ त्रित रजत का जोर गिरथवाओ द्वापर तपे का सत गिरथवाओ कलयुग रतगन का कूड़ गिरथवाओ महला पहला
1: शाम कैसे तंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे।

जुज में जोर छली चंद्रावल काम किस्म जादम भया पार जात को पीला आया वृंदावन में रंग किया कल मैं वेदर थर्पण।

0: अंतन पापत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पारा वारिया
1: अंत
0: न पावत देव सबे अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी हुन भेद बरंच विचार रघो हर जपन छाटू एक गरी पथरा जन को प्रभु तीन दयाल सब संग

सौ के ये कह रहे गुरु का प्यार गुरु का प्रसाद गुरबाणी आसन में सगल वस्ति ज्ञान का सर्व ठाकुर का ये आत्म सर्वी पावन नाम के सहज कुमार जन ठाकुर का दिया शर्मी घर के चरण बचकर मेरे लिए सानुकूलित हमसे जीवन का प्यार है ना कहीं कह रहे हैं।

0: भैया चित का भयो हम राम जिबी रही शरत चरणन में।
1: मैं अपना सुत तो है निवाजा
2: अपना सुत तो है निवाजा
1: अंक पर जुड़ कर मैं पहुंचा जा जहां कहां तुम धर्म चला जे कब दुकर ते लोक उदाय भारी करी तपस्या हेमकुंड पर बताया जा।

0: हमारा
1: तो दस बीस पिताज फरमाउंदे
0: तहां बुद्ध प्रभ तुझ हमारी बरन सके मेहमान जो तिहारी तुमरी मेहमान अपने पारा
2: तुमरी मेहमान अपने पारा
0: हम न सकत

मेहमान न जाने भेद, ब्रह्मा न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर

0: 了，
1: 把我们不做明星，阿伯
0: 我安个रूप होए प्रगटिया
1: वह अनेक रूप होए प्रगटिया
0: केड़े केड़े रूपां जाए आप

सिर पंख ध्यान देना, टाइम हो गया मेरा। तीसरे पंथ जलाएने मजसूर गहला।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: राग गौड़ी बैरागन विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हन। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूंगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत खडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

मेरे प्यारे, ओ माई बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

मेरे प्यारे माय बिलवड, ओ माय बिलवड माइंड, रंग रलिया मानो, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज ओ माय माइंड, द रियल फन इज इनसाइड, सो कम बैक.

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

0: और सात संगत जीओ, जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उसनु उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे।
1: जिथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा सुंदर स्वरूप अखां के आउंदा है, उत्थे कलगीधर पातशाह जी दी याद भी आ जांदी है। उच्चारण करो श्री वाहे
2: श्री
1: वाहे। इस लई आओ सारे प्यार नाल जो साहब सानू सुमति बख्श रहे हन के मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, ते कदम किसे माड़े पासे ना चले जाओ, क्योंकि माड़े पासे कदम जा रहे हन ता नरकां वल ले जा रहे, ते जे आ सत संगत वल कदम ले आए हन ता साहब कहंदे हन ओ कदम सफल हन। ओ मुख तनता दे योग है जिस मुख तो उच्चारण कीता है सतनाम, ते जिस रसना तो नाम नहीं उचारण होया साहब कहंदे हन रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटे। जिस रसना तो नाम नहीं उचरिया उस रसना नू तिल तिल करके कट क्यों नहीं दिता जा, बल्कि साहब ए भी बख्शिश करते हैं के नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जा, जिस हिरदे विच प्यारे दी सिक नहीं है, तुहाडे अंदर सिक है ताइयों गुरु चरणा विच जुड़े बैठे हो, ताइयों दूरों नेड़ियों आके धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच बैठे हो। ए हिरदे विच सिक है, जे सिक ना होवे ता कोई भी कम सिरे नहीं चढ़ सकदा। उच्चारण करो श्री वाहे
2: श्री वाहे।
1: वस्तु ओही प्राप्त होंदी है जिस विच मन लाया जावे, सिक हो साई वस्तु प्राप्त होई जित सेती मन लाए, ते जदो मन गुरु चरणा नाल जोड़ के तू एक भी कदम बार रखदा है, गुरु करोड़ा कदम तैनू अगो लैण लई आउंदा। तू एक बारी सिमरदा है गुरु तैनू बारंबार सिमर रहा। उच्चारण करो श्री वाहे
2: श्री वाहे।
1: सो आओ इन्हां दुखां नू सारे प्यार नाल मिल के पढ़ी, फिर कीर्तन समाप्ति है, फुलां चुकां बख्शनियां, सवेर दा कीर्तन 7:30 बजे तो 8:30 बजे तक नानक पे आओ होवेगा। आप जी दे चरणा विच बह के हाजरी भरांगा, जो गुरमुख पहुंच सकते हो गुरु दीयां खुशियां प्राप्त कर। आओ सारे प्यार नाल इन्हां तुकां नू पढ़िए, चरण चलो मार्ग गोबिंद, ते फिर की होवेगा मिटे पाप जपिए हर।

पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरी।

0: गुरु सच्चा है, दुनिया नु सच दी रोशनी दे, गुरु दे दरबार विच कूड़े दी कोई थां उथे सच्चे ही सच ने, सच्चा गुरु सच दी तकड़ी तोल ले, किसे दी रैत नहीं, फिर मेहरवान भी साचा साहेब साध मेहरो। सच्चा भी है ते मेहरो, सदा मेहर। जिस तरह माता पिता दी सारे बच्चियां ते मेहर है, माता पिता दे मन च किसे बच्चे दे मुतलक भी बुरियाई, माता पिता दी ए हर समय कोशिश होंदी है कि साडे बच्चे सुखी है। ए संत मित्र उस वाहिगुरु दी उस्तत करनी बनदी, जिस वाहिगुरु ने जिन कन की ते अखी नाक जिन जेबा दित्ती बोले था एडिया अमल वस्तु दित्ती ओदी उस्तत कर, ओदी हमेशा सिफत। बंदे को कुछ मिल जाए असी ओदा धन्नवाद कर, ओदा थैंक्स अदा कर। डॉक्टर साहब अख विच मुफ्त दवाई पा देवे उसदी असी रीढ़ी हो जाए, मुफ्त फीस कोई नहीं, साडे मन च उसका कितना सत्कार बन। पर हजूर फरमाउंदे ने जिस डॉक्टर ने मुफ्त दवाई पा दित्ती तेरी अख विच ओदा तू शुकराना करदा है, पर जिस मालिक ने तेनू मुफ्त अखां दित्तियां ओदा भी शुकराना कर, ओदी भी सिफत। तो कीर्तन सिफत, कीर्तन कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रस्म, आपा सारे मालिक दी सिफत ही जुड़े। सिफत करन वाला या सुनन वाला उन्हों मिलिया की हजूर फरमाउंदे ने जिसनू बख्शे सिफत सालाहा नानक पातशाही पातशाह। ओ पातशाह प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान, उस्तत तो तुहाडे हुक्म अनुसार सेवक गुरबाणी का कीर्तन कर। अगली पंक्ति साहबा ने स्रोतियां वास्ते फरमाई है कि सावधान, चौकड़े मार के बैठिए ते मन एकाग्र, तुरदा तुरदा पानी एक थां ते खड़ा हो जाए ना ओदे विचों मुंह दिसण लग जाए, चलदा पानी खड़ो जाए शीशे दा कम दें, चलदा पानी खड़ो जाए विचों मुंह दिसदा प्यारी साध संगत, नाम बाणी कीर्तन दे सदके जे मन एकाग्र हो जाए उस मन दे अंदरों धन गुरु नानक पातशाह। मन दा जुड़ना ही गुरु ने सारे ने, साचा साहेब सदवे। माता पिता दी हर बच्चे वास्ते पसंद, जे मां किसे वेले बच्चे दी गलती नू वेख के कह देंदी है मर जा, हकीकत विच ओ मां जिहड़ी है बच्चे नू नहीं कहिंदी, ओदियां बुरियाईयां नू कहिंदी है, अंदरों तां आसीस देंदी है। पूता माता की सदा ही आसीस, इसे तरह मेहरवान सतगुरु सदा ही मेहर करदा है। जे किसी वेले कोई तकलीफ का मोड़ भी आ गया, दुख का मोड़ भी आ गया है, इन्हें विच भी कोई भला नहीं। पर अनजान बच्चे नू जिस तरह माता पिता की झिड़क का पता नहीं ना, उन्हू ज्ञान नहीं, पर उस झिड़क का वड्डे होके पता लगता है, जिवें माता पिता की उस झिड़क नू समझ के पढ़ जाता ज चंगे कमां च लग जाता तो मेरा जीवन सुधर जाता। इसे तरह जे किसी वेले दुख आया, जे गुरु ने किसी वेले झिड़क भी दिता है तो फिर सिख उदास नहीं होता। सिख दोवें हाथ जोड़ के अरदास करता है, जे गुर झिड़के तो मीठा लागे, क्योंकि मेहरबान जो अज कलगीधर पातशाह जी भाई जोगा सिंह जिस दे अंदर होमे का बीज बोया गया, होमे वाला सिख जड़ा है वह वाहगुरु नू भांदा नहीं। हर जी हंकार ना भावे ही वेद फूक सुना, ओनू दूर करने वास्ते सिख नू चिट्ठी दे के पिशावर भेज। समा हो गया, आनंदकारी की मर्यादा आरंभ हुई। भाई जोगा सिंह एक लाम लैके मथा टेक के बह गया, दूजी लाम लैके भाई जोगा सिंह जिस वेले मथा टेक के बैठदा है, इधर सामने सिख बैठा सी चिट्ठी वाला, उधरों भाई जोगा सिंह ने तकिया, इधरों इस सिंह ने तकिया, जिस वेले चार अखा मिलिया ते दोवां दे हथ जुड़ गए, ते दोवां ने फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा
1: श्री वाहिगुरु जी की फतेह।
0: ते मर्यादा कलगीधर पातशाह जी का हुक्म, दो सिंह का मेल होया है प्यार नाल फतेह बुलान। अधूर कह लगे भाई दया सिंह जी, जे प्यार नाल दोवें सिंह फतेह बुलाते हैं, जे वह नीज ला के देख तो दोवां दे विचकार मैं दोवां नू फतेह का जवाब देता। फिर एक सिख फतेह बुलाए ते दूजा पिट दे जाए, साहब जी कह लगे वह सिख नू पिट नहीं देंदा, मैनू पिट दे। फतेह फतेह बुलाई, सिख ने चिट्ठी भाई जोगा सिंह दे के रख, विच की लिखिया सी, जोगिया जे बैठा है तो उठ, जे उठिए है तो तुर पाओ, जे तुरिया है तो भज पाओ छेती, क्योंकि पूरे गुरु सच्चे वैद नू बड़ा फिक्र लग गया कि मेरा सिख भाई जोगा सिंह होमे दे रोग ग्रसिया छेती। इतिहास च लिखे प्यारी सात संगत, भाई जोगा सिंह ने दो लावा लिया ते दो नहीं तुर। महापुरुषां दी रसमां तू भी सुनिया है कि मर्यादा पूरी करने वास्ते दो लावा भाई जोगा सिंह ने दुपट्टे नाल देख के संपूर्ण कीती मर्यादा। भाई जोगा सिंह तुर पिया, नाल दा सिंह भी नाल। जदों तुरिया पहला ख्याल मने च आया कि मना नाना चलिया मेरे तो बगैर गुरु दा कम, आखो श्री वाहे, सारे आखो वाहे, कोई रसना खाली ना रहे, जो भी माई पाई मेरे धन गुरु नानक पातशाह दे दरबार च आके जुड़े आए, आओ पागल वालियो अपनी रसना पवित्र करो।

सच में तुसी सारे पग वाले जो अपने आप नो नाम नाल जो केड़े प्यार नाल रसना ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपे सदा जपे रसना इस वास्ते मुड़ मुड़ वाहिगुरु वाहिगुरु कर या तो वाहिगुरु नाल प्यार पै जाए वो बड़ा मुश्किल है। साडा दुनियादारी नाल प्यार कम्मा नाल प्यार है दुकाना नाल प्यार है दोस्तां मित्रां नाल प्यार है वाहिगुरु नाल तो प्यार पैंदा ही नहीं। या तो प्यार पै जाए या प्यार प्राप्त करने वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप शुरू कर दे या तो प्यार हो जाए या उदे प्यार दी प्राप्ति वास्ते केड़ा साधन है उदी याद हर समय याद कर दे आम कहावत है ना जिन्हू याद करिए वो भी याद करे इस वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का याद हर समय करे बच्चियां तू ही कराया कर निके निके बच्चे मातावां दा फर्ज है अमृत वेले उठा के बच्चे उठते हैं उन्होंने आके सोने जुड़े करके सोने केसां दी संभाल करके बच्चे ओ वाहिगुरु वाहिगुरु जो ए प्यार वधदा जो जो प्यार वधदा जाएगा त्यों प्यारा नेड़े नेड़े आंदा जाएगा। अज तक लो प्यारा किस तरह बख्शिश पिया करता है ते इधर भाई जोगा सिंह दे अंदर जिहड़ी हौमे दा बीज सी हुण दरख्त बन गया नाना चलिया मेरे तो बगैर गुरु दा काम चल मना छेती तुरदा तुरदा भाई जोगा सिंह हुशियारपुर पहुंच शाम दा टाइम हो गया दीवा बत्ती जल गए भाई जोगा सिंह ने सोचे सुने हुशियारपुर बड़ा सुंदर शहर है चलो मना सैर ही करिए। जिस वेले मन कमजोर हो जाए ना उस वेले सैलानी बन जाए शरीर नू बुखार हो जाए शरीर कमजोर होता जाता कमजोर शरीर नू सर्दी भी छेती लगती है गर्मी भी छेती इसे तरह जिस मन नू होमे दा बुखार लग जाए वो मन कमजोर हो जाता है उस मन दे उत्ते दुखां सुखां दा छेती असर होता है दुखां दे ए कमजोर मन दी निशान कई इंसान जे सुख आ गए तां भी रब नू भुल जांदे ए कमजोरी इंसान जे कोई दुख का मोड़ आ गया ता भी रब तू नास्तक हो जी मैं रोज गुरुद्वारे जाता सी मैनू दुख क्यों मिले आखो तेरी गुरुद्वारे ही नहीं जा कमजोरी पर जिथे मन बलवान होगा वो तो अरदास करेगा केतिया दुख दुख सद मारे भी दात तेरी दाते भी दात सिखती अवस्था जे सुख देता तुझे अराधी दुख भी घबर ना मन तैरिया कला नहीं ले जाए ये मोड़ हम जी मोड़ ना है तो दूजा रस्ता नहीं मिलता जीवन के अंदर भी मोड़ पर सावधानता वास्ते शब्द हर समय शब्द मन कमजोर होया सैलानी बने नाल दे सिंह धर्मशाले आराम करने वास्ते किया आप भाई जोगा सिंह हुशियारपुर दिया गलियां बाजार अज कर एक बाजार विचों लंघिया चवारे ते तकिया की वेखिया तेरी सात संगत फरीद जी ने लिखिया है फरीदा ए दिस गंदला तरिया खंड वेव दिया गंदला उते खंड गलेसी होई की तकिया वेसवा विच मन कमजोर होया होया सी मोया गया किसी महापुरुष ने लिखिया हुशियारपुर पहुंच के होना सी हुशियार पर एक वेसवा वेख के दिती सुरत ख्याल आया चवा

परायां पराई स्त्री वन लुक अंदर ठाणी याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे असी हेठा कर लिया पिछे मुड़ मैनू तां कोई वेख नहीं प्यारी सास संगत अद्धी रात भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर आ हुण कोई नहीं वेख पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना च आवाज आई केड़ी

0: योग आश्रम में पहुंचे, हजूर ने दूरों ही तक देखे प्यारी सास संगत, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गया। आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुला। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे, जोगा सिंह भाई आखां जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नूं छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। भाई जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी, जे अंतर जामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा होंदा तां मैनूं सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर। जे गुरु अंतर जामी नहीं, जे गुरु इथों दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह किवें बां फड़ेगा, बारह साल एवं गुरु की सेवा की। आखो सेवा अंतर जामी सतगुरु सोचन लग, सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा, गुरु नू पता है शरदा तू हीर पिया होंगे। हजूर ने कहा जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजर नीवियां। हजूर ने फिर किया जोगे आ मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा फिर खा। तीजी मेरी जसेले साहबा ने किया जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, आई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबन लग गया कि तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देने वाला इको ही है। दोवे हाथ रो पिया। भाई जोगा सिंह अच्छा मैं पापी हां, मेनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोलना कर। हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कह लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमायश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया, ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया, पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश च पूरा, पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी, पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै। तो जो गया मैं संगता दा हुक्म सिर मत्थे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू ने कर जांदा, चंदू मेरे ते फुलां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे कर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई, पर मैं अजमाइश ही पूरा दीदी चंद ने मेनू अजमाया, छेवे दुशाले लैके भजा जाता है पिछे बादशाह की फौज आ, दीदी चंद ने छेवे पातशाह का ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ में छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघां ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिनी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
1: ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई नहीं। भूल गया रो रो के भाई जोगा सिख का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए ता जा तेन बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास की लिखे है प्यारी सास संगत भाई गंगा सिंह ने दो नामा नहीं आते दो नहीं.
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

0: महबूबे दीमा तके गाय के सन्माने डिमांड निकाले रकान संकट श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देखकर बड़ी उम्मीद के नाम में बैठी गुरु शासन जो आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आपकी समा कटिया जो आपकी ये सोच लिया कर आप दरबार में जाना है एक गल नाल आय हो गई सब कुछ टूट पैंड आगे हो गई थी पैसा जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज के नाल कुछ संगीत गलत की सहसंजो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी दशहर साहब जी कान जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सहसंग जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना की गल पै गई है कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बनता गल है आग गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की योगी ने मिली पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है साधन जी पैसा जी कहा तो हाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी यह सिर्फ तंत्र शुरू गुगल तो ठीक है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाना ते पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आद का स्वरूप है ना परमेश्वर यह पहले की बात है जब जो सू समझ आई कीर्तन की है तो फिर तो सत्संग की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राश पच्ची मिनट टाइम है राश तकरीबन 20-22 मिनट अंग्रेजी समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर तरफ चोट बनाने राग तकलीफ है शर्म करेंगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी छोटे धन्यवाद मैं पूछ सके मैं कब तो नजीर से वाहे
1: वाहे।

0: कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं। आओ बड़े प्यार न कहिए।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.